यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

0: वर्षाणि यावत् अम्बेड्कर्वर्येण संस्कृताध्ययनं कृतम्। संस्कृते स्थितं ज्ञानराशिम् अधीत्य गुरुं बहून् प्रश्नान् पृच्छति स्म सः। शास्त्रेषु यत् चर्चितं तत् मूलरूपेण एव ज्ञातव्यं, न तु अनुवादरूपेण। इत्येषा प्रबला इच्छा अम्बेड्कर्वर्यं संस्कृताध्ययनाय प्रेरितवती। प्रयत्नेन सा इच्छा तेन सफलीकृता। अम्बेडकर जी का संस्कृत सीखना उनके 40वें साल में शुरू हुआ। उनको नागप्पा शास्त्री के जैसे संस्कृत पंडित गुरु के रूप में मिले। अम्बेडकर जी का संस्कृत पढ़ना हफ्ते में 3 दिन होता था और वह 5 साल तक चालू रहा। संस्कृत के ज्ञान भंडार की पढ़ाई करके गुरु को वे बहुत प्रश्न पूछते थे। भारतीय शास्त्र में जो संस्कृत में लिखा है वह संस्कृत में ही पढ़ना और समझना चाहिए, अनुवादों से नहीं, ट्रांसलेशन से नहीं। यह उनकी प्रबल इच्छा थी और इसी प्रबल इच्छा ने उनको संस्कृत पढ़ने की प्रेरणा दी। बहुत प्रयत्नों से उन्होंने अपनी संस्कृत सीखने की इच्छा सफल की। ये सारे अंश हम संस्कृत प्रेमियों के लिए, संस्कृत छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेरणादायक भी है। ये अंश हमें संस्कृत के विषय में और अम्बेडकर जी के बारे में अभिमान जगाते हैं। अम्बेडकर वर्यस्य संस्कृत प्रीति ही अस्मासु गर्वं जनयति, परंतु तेन आरब्धम् अस्पृश्यता निवारण कार्यम् इतोपि न समाप्तम्, तस्य भारस्य वहनात् वयम् विमुखाः न भवेम। अम्बेडकर जी ने शुरू किया हुआ अस्पृश्यता निवारण का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उस कार्य का भार हमारे कंधों पे है, हम उस कार्य से विमुख नहीं होंगे। इदानीम् अद्यतन प्रश्न। अम्बेडकर वर्यः कति वर्षाणि संस्कृतम् अधीतवान्? इदानीं गीता श्लोक पठनम्। अष्टमोऽध्यायः, श्लोक संख्या 1-10। अध्याय 8, श्लोक संख्या 1-10। ओम श्री परमात्मने नमः।
1: ओम श्री परमात्मने नमः।
0: अथ

0: अभ्यासयोगयुक्तेन
1: चेतसानान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं
0: परमं पुरुषं दिव्यं।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली गुणधुनी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्युनिंग आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: गुण ग्राहकता का महत्व. रंग बिरंगे फूलों पर इतराती इठलाती उड़ती हुई तितली कितनी प्यारी लगती है. ऐसे ही फूलों पर दौड़ लगाने वाली मधुमक्खी भी, जो भिन्न भिन्न की धुन से भिन्न भिन्न पुष्पों से परागकण इकट्ठा कर मधु यानी शहद बनाती है. मधु मूलतः मधुर यानी स्वाद से मीठा और शरीर के लिए सेहतमंद होता है. ऐसे ही जो व्यक्ति गुण रूपी मधु का संग्रह करता है और ईश्वर की रचना मानव के भिन्न भिन्न गुणों को देखता है, वो उनके गुणों से स्वयं मधु के समान मीठा बन जाता है. वास्तव में गुण ग्राहकता एक महान सद्गुण है. गुण ग्राहकता अर्थात सदा दूसरों के गुणों को देखना और उसे धारण करना, गुणवान व्यक्ति के गुण परख कर स्वीकार करना एवं गुणवान से शिक्षा लेकर उन्हें अपनाना भी गुण ग्राहकता ही है. व्यक्ति, प्राणी, पशु, पंछी, पुष्प या किसी जड़ वस्तु से भी कोई न कोई गुण उठाना भी गुण ग्राहकता ही है. सृष्टि में परमात्मा के गुण चराचर व्याप्त है, फिर चाहे वो मानव हो या कोई पशु या जड़ वस्तु या पदार्थ, उन सभी में कुछ न कुछ विशेषता, खूबी, गुण जरूर होता है. उन पर अगर दृष्टि डाली जाए तो गुण रूपी मोती सहज ही पाए जा सकते हैं. इसे पाने से व्यक्ति की दृष्टि निर्दोष हो जाती है और दृष्टिकोण सकारात्मक बनने लगता है. गुण धन से सच्चे अर्थ में व्यक्ति मालामाल बनता है. व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, उसके गुणों को देखने से उसके प्रति मन में सहजी प्रेम और प्यार प्रकट होता है. गुण ग्राहक वृत्ति से अंतर मन की सफाई सहज हो जाती है और मन से नफरत, घृणा भाव और वैर वैमनस्य का मेल भी सहज धुल जाता है एवं दुश्मन भी दोस्त नजर आने लगते हैं. किसी के गुण पर दृष्टि डालने से उसके प्रति अपनत्व के भाव पैदा होते हैं. ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर जब दुनिया में बुरा व्यक्ति ढूंढने निकले तो उन्हें सभी के गुण ही दृष्टिगोचर हुए, क्योंकि वे महान गुणग्राही थे. अतः गुण ग्राहकता को अपनाइए और दिव्य गुणों की खुशबू से जीवन को महकाइए. ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं.

0: पुतिन से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रही थी। इस बीच अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।
2: मुझे लगता है कि ये आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जो राष्ट्रपति और प्रशासन शुरू से ही कहते आ रहे हैं। भारत एक गतिशील, मजबूत और मुश्किलों का सामना करने में सक्षम अर्थव्यवस्था वाला देश है और मुझे लगता है कि जो जीडीपी रिपोर्ट या आंकड़े सामने आए हैं वे फिर इस बात को पुख्ता करते हैं कि भारत यहां तेजी से उभरती हुई एक बड़ी ताकत है।
0: अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बिसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है।
3: हमने अमेरिका को पूंजी के प्रवाह और व्यवसायियों को विकसित करने के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाया है। हमने लाखों कामकाजी परिवारों को ऐतिहासिक कर राहत दी है और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त किया है। ये उपलब्धियां विकास के अगले दौर को आकार दे रही हैं और हमने तो अभी शुरुआत ही की है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: Samachar Prabhat mein aapka phir swagat hai. भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है।
3: भारत ने दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। यह बयान हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि संधि को स्थगित करने के भारत के कारण इसके निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहराते। पैनल ने भारत को 1960 के जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन जारी रखने का आह्वान किया। हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मध्यस्थता पैनल की स्थापना ही संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं।
5: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो चुकी है और 3,925 लोग अभी लापता हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है, वहीं देश भर के 11,000 से अधिक लोगों को भी बचाया गया है। भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं। बाढ़ से 11 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नेपाल ने कई देशों से फ्रीजर, DNA परीक्षण उपकरण, ड्रोन पुल और विशेष सुरंग बचाव उपकरण सहित सहायता मांगी है। 18 भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम DNA पहचान में सहायता कर रही है। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मौसम विभाग ने आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
6: उड़ीसा में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़ और केउंझर के लिए रेड वार्निंग जारी की है। झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है, जबकि 12 जिलों येलो वार्निंग में है। ये बारिश गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उससे सटे उड़ीसा के उत्तरी तटीय इलाकों में बने वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के कारण हो रही है। IMD का अनुमान है कि कल के बाद बारिश कम हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार भुवनेश्वर।
0: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत 171 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई हो चुकी थी। मंत्रालय ने बताया कि धान की खेती 414 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दलहन की बुआई 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है। नागालैंड विधानसभा का 9वां सत्र आज शुरू होगा। इस सत्र में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बिल 2026, कई सरकारी विधेयक और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अभिकरण ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से इसकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में जानकारी मांगी है। ये निर्देश वर्ष 2013 में दिए निर्देश के बावजूद तेजाब की आसानी से उपलब्धता पर चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, 2 कोपा अमेरिका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हरा दिया है। ताशकंद में कल सिंगा मयूम शमी ने 86वीं मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मैच बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
8: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, किर्गिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी बोले, यूक्रेन युद्ध का अंत आवश्यक। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है। जनसत्ता की सुर्खी है, किर्गिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति से भी वार्ता और कूटनीति से पश्चिम एशिया के संघर्ष के समाधान की अपील की। अमर उजाला के शीर्षक है, वैश्विक बाधाओं के बाद भी रफ्तार में भारत, विकास दर 7.8% पहली तिमाही में भारत की जीडीपी सबसे तेज, खपत और निर्यात ने संभाला मोर्चा। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अगर हिंदू जागते हैं तो दुनिया जागती है, मानवता की निस्वार्थ सेवा के जरिए भारत विश्वगुरु बना। राजस्थान पत्रिका ने समुद्र में शक्ति शीर्षक से सचित्र दिया है, आईएनएस निपुण नौसेना में शामिल, समुद्र में गहराई तक मदद पहुंचाने में सक्षम है स्वदेशी पोत।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया। और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM KLE कनसु।
10: ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನವ ಹಾಗೂ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಆದಾಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕನಸಿನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸುಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕುವ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಒಂದು ದಿನದ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ರವಿವಾರ ದಿನಾಂಕ 18 October 2026 ಎಂಪವರ್ 365 ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕಂಪನಿಯವರೆಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಲು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9513519666 ಕಿಕೋನಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ.

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मस्ती भरे शो बी रिलैक्स में। और आपने ट्यून किया है बेलगावी का सबसे बड़ा और पहला रेडियो स्टेशन, जहां हम मस्ती के साथ साथ देते हैं आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन, जिससे आपका ज्ञान और ध्यान दोनों बढ़ता है और साथ ही आप होते हैं मनोरंजित, यानी आपका एंटरटेनमेंट भी होता है। तो चलिए शो को शुरू करते हुए मैं आपको बताता हूँ आज का ये अनोखा टॉपिक, इट्स अबाउट द टेक्नोलॉजी। तो हम आज डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बेसिक लैंग्वेज में। वैसे टेक्नोलॉजी एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है जिसके अंदर आप घुसते चले जाएंगे, पर हम थोड़ा सा बेसिक जानने की कोशिश करेंगे। आने वाले एपिसोड्स में थोड़ी गहराई में भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल चलिए शुरू करते हैं थोड़े बेसिक से। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी इज अ वास्ट एंड इवॉल्विंग फील्ड विद प्लेंटी ऑफ इवॉल्विंग टॉपिक्स टू डिस्कस। तो करेंगे आज उन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में बात। आप कहीं जाइएगा मत और बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन वेनु धोनी 90.4 KLE कनसूपर।

0: चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कुछ टेक जायंट्स के बारे में। कंपनीज जैसे बहुत मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट है एप्पल, आपने सुना ही होगा, एप्पल के फोन आते हैं, लैपटॉप्स है और बहुत भी कई सारी चीजें होती है। गूगल टेक जायंट्स, Amazon.com, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, सैमसंग, इंटेल कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी कई कंपनियां हैं जिनको हम टेक जायंट्स बोलते हैं। ऑल दीज कंपनीज आर कॉल्ड द टेक जायंट्स ऑफ द टेक इंडस्ट्री। इट्स ऑल्सो रेफर्स टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज, जिनकी हमारी लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स पर एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट बना रहता है। और भी कई बड़ी कंपनीज हैं जिनमें से कुछ नाम हमने आपको बताया, तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि टेक जायंट्स का मतलब क्या होता है। चलिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद थोड़ा सा मनोरंजन भी कर लेते हैं, कुछ सॉन्ग्स सुनते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वेणु धोनी 90.4 KLE कनसू पर।
1: बजने दे जरा।

0: प्रिय, किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो।
1: नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ।
1: जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले।
2: नारद जी।
1: नारायण।

0: नारायण, क्यों बैठी हो खोई खोई? मेरे योग्य है सेवा कोई?
1: भरे नहीं अभी घाव पुराने, फिर आए हो आग लगाने।
0: मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो।
1: कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए।
0: अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी?
1: वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचाए। निस दिन देखूं जिनके सपने खो बैठूं वो प्रीतम अपने।
0: तुम नहीं समझी, कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना, मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना।
1: बस इतना ही? आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीते रुक्मिणी हारी।
0: परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना?
1: वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलूं।
0: नारायण नारायण।

0: कुछ धोखा है राम दुहाई, इतने भारी नहीं कन्हाई।
1: ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है।
0: मेरे पास जो था ले आई, दे दू मुझको कृष्ण कन्हाई।
1: दे दू लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचू, दासों के बाजार में बेचू। लो ये तंबूरा बंसी बजैया, पकड़ो ये करताल कन्हैया।
2: भामा
0: स्वामी।
1: कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी।
0: नीलामी?

0: अपना घर जो आप जलाए उसकी बिगड़ी कौन बनाए।
1: भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहां विरह की मारी।
0: रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो।
1: रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर और उम्मीद है आपके चेहरे पर मुस्कुराहट अभी तक बनी हुई है क्योंकि आपने ट्यून किया है बेलगावी का सबसे पहला रेडियो स्टेशन वेणु धोनी 90.4 KLE कनसू। दोस्तों, जहां टेक्नोलॉजी की बात आती है वहां सबसे पहले अगर किसी चीज का ख्याल आता है तो वो है आप सभी के मोबाइल फोन। आजकल जो इंसान नहीं कर सकता वो बड़ी से बड़ी मशीन नहीं कर सकती, वो आपका फोन कर सकता है, आपका स्मार्टफोन कर सकता है, आपके लिए कर सकता है। कुछ फीचर्स जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहला है कि HD पिक्चर्स लेना या 4K वीडियोस लेना। आजकल बड़े बड़े कैमरास लगते हैं लेकिन वही सेम चीज आपका फोन भी कर सकता है। फोन से आप किसी भी चीज का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। 5G कनेक्टिविटी, जी हाँ, 2G से लेकर सीधा आपका स्मार्टफोन अब पहुंच चुका है 5G पर। आजकल एक और नई चीज आई है, वो है फोल्डेबल स्क्रीन। अगर आप फोन देखोगे तो आजकल फोन भी फोल्डेबल आते हैं, तो आप फोन अपना फोल्ड करके कहीं भी पॉकेट में डाल सकते हैं। आपके कई सारे काम जो लैपटॉप पर ही पॉसिबल थे अब आप फोन पर भी कर सकते हैं। बहुत सारे और भी फीचर्स है, ये तो कुछ फीचर्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। तो कुल मिलाकर एक तरीके से ये आपका पर्सनल असिस्टेंट भी बन गया है। शेयरिंग इमेजेस टू ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन बैंक टू अदर, मतलब एक बैंक से आप किसी भी बैंक में किसी भी वक्त एक ही क्लिक पर पैसे भेज सकते हैं। ये क्या है, ये सारा है टेक्नोलॉजी। ये तो रही इवोल्यूशन ऑफ फोन्स की बात, ऐसी कई जानकारी देंगे आपको, पर बने रहिए हमारे साथ आप वेणु धोनी 90.4 KLE कनसू पर।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मस्ती भरे शो बी रिलैक्स में। और आपने ट्यून किया है बेलगावी का सबसे बड़ा और पहला रेडियो स्टेशन, जहां हम मस्ती के साथ साथ देते हैं आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन, जिससे आपका ज्ञान और ध्यान दोनों बढ़ता है और साथ ही आप होते हैं मनोरंजित, यानी आपका एंटरटेनमेंट भी होता है। तो चलिए शो को शुरू करते हुए मैं आपको बताता हूँ आज का ये अनोखा टॉपिक, इट्स अबाउट द टेक्नोलॉजी। तो हम आज डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बेसिक लैंग्वेज में। वैसे टेक्नोलॉजी एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है जिसके अंदर आप घुसते चले जाएंगे, पर हम थोड़ा सा बेसिक जानने की कोशिश करेंगे। आने वाले एपिसोड्स में थोड़ी गहराई में भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल चलिए शुरू करते हैं थोड़े बेसिक से। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी इज अ वास्ट एंड इवॉल्विंग फील्ड विद प्लेंटी ऑफ इवॉल्विंग टॉपिक्स टू डिस्कस। तो करेंगे आज उन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में बात। आप कहीं जाइएगा मत और बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन वेनु धोनी 90.4 KLE कनसूपर।

Once again to your favorite show Be Relax and you have tuned into Venu Dhwani 90.4 KLE Kanasu. दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही ज्यादा यूज होता है और वो है टेक्नोलॉजी. फिर चाहे वो फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो या फिर जिससे हम सबसे ज्यादा चिपके हुए होते हैं दिन भर, हमारे मोबाइल फोन. दोस्तों टेक इनोवेशन जैसे एक्सप्लोर ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज दैट हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड डेली लाइफ. करेंगे बात कुछ टेक जायंट्स के बारे में. टेक जायंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, मतलब कुछ ऐसी कंपनीज की जो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी बड़ी है, मतलब बहुत हद तक काफी बड़ी है, जिनका नाम आपने भी सुना होगा. लेकिन हम बात करेंगे उसके बारे में इन सुपर हिट सॉन्ग्स के बाद. तो सुनते रहिए वेनु धोनी 90.4 KLE कनसु विद आरजे आयुष.

0: चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कुछ टेक जायंट्स के बारे में। कंपनीज जैसे बहुत मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट है एप्पल, आपने सुना ही होगा एप्पल के फोन्स आते हैं, लैपटॉप्स है और बहुत भी कई सारी चीजें होती है। गूगल टेक जायंट्स, Amazon.com, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, सैमसंग, इंटेल कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी कई कंपनियां हैं जिनको हम टेक जायंट्स बोलते हैं। ऑल दीज कंपनीज आर कॉल्ड द टेक जायंट्स ऑफ द टेक इंडस्ट्री। इट्स ऑल्सो रेफर्स टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज, जिनकी हमारी लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स पर एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट बना रहता है। और भी कई बड़ी कंपनीज हैं जिनमें से कुछ नाम हमने आपको बताया, तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि टेक जायंट्स का मतलब क्या होता है। चलिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद थोड़ा सा मनोरंजन भी कर लेते हैं, कुछ सॉन्ग्स सुनते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वेनु धोनी 90.4 KLE कनसू पर।
1: बजने दे जरा गम को भूल कर।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू और मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त हम सफर आरजे स्वरा। यादों की बारात का खूबसूरत सा सफर लेके आई हूँ मैं, जहाँ पे मैं आपको बिल्कुल अकेला होने नहीं देती, मैं आपके लगातार साथ ही रहती हूँ। अकेला रहना, अकेला होना और अकेले जिंदगी जीना बड़ा ही मुश्किल होता है, और कितना मुश्किल होता है, क्यों मुश्किल होता है, यही बातें आज के शो में हम करने वाले हैं, क्योंकि यही हमारा थीम है। शुरू करते हैं आज का शो और सुनाती हूँ आपको आज का पहला गाना, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। एन इवनिंग इन पेरिस इस फिल्म का ये गाना है जो 1967 में रिलीज हुई थी। मोहम्मद रफी साहब की खूबसूरत सी आवाज, जिसे म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने, लिखा है हसरत जयपुरी ने। शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर के ऊपर फिल्माया गया ये खूबसूरत सा गाना है। शर्मिला जी के साथ जाने का हर एक बहाना शम्मी जी इस गाने में आजमा रहे हैं। ऐसे ही बहाने कभी किसी ने आपके लिए भी आजमाए होंगे, याद कीजिए, थोड़ी सी पेट में गुदगुदी महसूस कीजिए। सुनिए ये खूबसूरत सा गाना और लौट के आइए 90.4 FM KLE कनसू पे।

दोस्तों, जैसे मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको बिल्कुल अकेला होने नहीं दूंगी, मैं वापस हाजिर हूँ। जिंदगी के सफर में किसी का साथ मिल जाए तो बड़ा सहारा लगता है, अकेले तो छोटा सा सफर भी बड़ा लंबा और बोरिंग हो जाता है। फिर ये तो जिंदगी है दोस्तों, अकेले कैसे कटेगी। सुर में सुर मिल जाए तो जिंदगी का साज और भी सुरीला बन जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अगला गाना है जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। नर्तकी इस फिल्म का गाना है जो 1963 में रिलीज हुई थी। मोहम्मद रफी साहब की खूबसूरत सी आवाज, शकील बदायूनी की कलम और म्यूजिक रवि साहब का। सुनील दत्त और नंदा पे फिल्माया गया ये खूबसूरत सनगमा आपके लिए।

वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसु पे यादों की बारात की आपकी हम सफर राजेश्वरा फिर से हाजिर है और वो अपना वादा बिल्कुल नहीं भूलती क्योंकि उसने कहा है कि वो आपको अकेले नहीं रहने देगी। अकेला दिल बेहद तन्हा महसूस करता है। इस तन्हाई में अगर कोई खुशी का भी मौका आए तो खुशी अधूरी लगती है और गम हो तो वो ज्यादा तकलीफ देता है, जख्म और ज्यादा दर्द देते हैं और छोटी छोटी बातों पे बहुत डर लगता है। एक अकेले दिल की तड़प इस गाने में है जब वो अपने साथी को बुला रहा है। अगला गाना है अकेले है चले आओ, राज फिल्म का ये गाना है जो 1967 में रिलीज हुई थी। राजेश खन्ना और बबीता ने इस फिल्म में काम किया था। मोहम्मद रफी साहब की आवाज फिर से और कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक। इस गाने को लिखा है शामीम जयपुरी ने। सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना और इसमें जो दर्द बयां हुआ है उसे महसूस करने की कोशिश करते हैं, पर डरना नहीं, इस दर्द से आपको कभी गुजरना नहीं पड़ेगा।

दोस्तों, असली प्रेमी वही होता है जो अपनी प्रेमिका को सुरक्षित रखना चाहता है, दुनिया में सबकी बुरी नजरों से बचाना चाहता है, और इसीलिए वो अपनी प्रेमिका से गुजारिश करता है कि कहीं अकेले बाहर न निकलना। दोस्तों, अगर आपको भी कोई ऐसी बात कहे तो नाराज नहीं होना, ये कोई बंधन नहीं है, महज चिंता है। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे, ये खूबसूरत सा गाना हम अब सुनने वाले हैं जो फिल्म ससुराल से है। राजेंद्र कुमार और सरोजा देवी के ऊपर फिल्माया गया ये खूबसूरत सा गाना, ये भी गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने, लिखा है हसरत जयपुरी ने और म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने। तो आप भी कभी अकेले बाहर नहीं जाना, सुनते रहना वेणुध्वनि 90.4 FM KLE कनसू।

यादों की बारात का खूबसूरत सा सफर चल रहा है, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे सदाबहार नगमे सुनाती हूँ जो आप रोज तो नहीं सुनते, पर जब भी सुनते हैं गुनगुनाए बिना रह नहीं पाते। तो चलो साथ में ये अगला गाना गुनगुनाते हैं। गाने के बोल है, ओ दूर के मुसाफिर। उड़न खटोला फिल्म का ये गाना है जो 1955 में रिलीज हुई थी। ये भी गाना मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है। शायद अकेलेपन के दर्द को मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ बहुत अच्छे से महसूस कर पाती है, इसीलिए उनकी आवाज़ इन गानों में हमें सुनाई पड़ती है। ये गाना दिलीप कुमार और निम्मी के ऊपर फिल्माया गया है। म्यूजिक दिया है नौशाद अली जी ने और लिखा है शकील बदायूनी ने। दिल जब अकेला रह जाता है तो साथ पाने को तड़प उठता है और हर पल यही मनाता है कि किसी दूर के मुसाफिर का साथ उसे मिल जाए और लंबी जिंदगी काटने में आसानी हो जाए। उसे अकेलेपन से भी ज़्यादा किसी के बिछड़ जाने का डर लगता है। इस डर को हम ज़रा महसूस करके देखते हैं, सुनते हैं ये अगला गाना।

पॉजेसिवनेस की भी हद होती है दोस्तों, पर कहते हैं ना, प्यार तो हर हद पार कर देता है, हर हद को तोड़ देता है। अब अगर अकेले बाग में जाने से, दिलवाले फूलों से और शौक कलियों से भी डर लगने लगे, तो समझो आपको प्यार हो गया है और ये प्यार परवान चढ़ गया है। अगला गाना है तुम अकेले कभी बाग में न जाया करो, आओ प्यार करे। इस फिल्म का ये गाना है जो 1964 में रिलीज हुई थी। इसे म्यूजिक दिया है उषा खन्ना ने, फिल्माया गया है जॉय मुखर्जी और सायरा बानो के ऊपर, और आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर ने। सुनिए ये खूबसूरत सा गाना। और अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा पागल है जो आपको बाग में भी जाने से रोकता है, तो उसे कहिए भाई इतनी बंदिशें न डालो, मेरे साथ हो लो चाहे तो। सुनिए ये खूबसूरत सा गाना, सुनते रहिए वेणु ध्वनि।

एक अकेली खूबसूरत लड़की इस दुनिया के मेले में क्या अनुभव करती है, ये अगले गाने में बताया है। वक्त बदल जाए, जमाना बदल जाए, चाहे जनरेशंस चेंज हो जाए, पर एक अकेली लड़की की परेशानियां तो सदियों से वही है। अगला गाना है दुनिया का मेला, मेले में लड़की अकेली। राजा जानी इस फिल्म का ये गाना है जो 1972 में रिलीज हुई थी। इसे गाया है लता मंगेशकर ने, फिल्माया गया है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के ऊपर। म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और लिखा है आनंद बख्शी ने। सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना और सुनते रहना वेणु ध्वनि।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धूली 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनि 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुन और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

मुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: या

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों के बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसूबे आप ट्यूने यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु धुनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।